ए मैदानुगा मीस्ता कुंती बेतिबों दिगुदे मिगेंगोस एकंतहुगे बिरुवेरिकं बोडुवे एगे इंतिहाया दाहिंदु मीस्ताकुंगे हिसाबु बेल्लेवों अवस्को देववातो अल्लोह के हजरतुगा दन्नवा एबामी हुन्ना शफायत तेरे वड़ागन्नवानिती।

0: नुआ दी है 1 MHz दिवे ही FM मैं दुरो नमा दो वागो तु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: সাম্মন গ্যাডু দিভেই এফএম, দিভেই এফএম, দিভেই নায়ক।
1: মোদিহে একেম মেগাহার্টস, দিভেই এফএম।
2: আসসালামু আলাইকুম নদীকে মেগাহার্টস দিভেহি এফ এম মেগাডি গার্ডো সামুগেন্দা এম মেহা আই হুন্ত নবর উফাভেদু বাগুত কোলকং এদমুং দিভেহি এফ এম কুরিয়েগেন্দা টি টাইম রিকোয়েস্ট শোয়া একিগ মেগাডি গমে বদল কোলে আলগন ফাহিদা টি টাইম রিকোয়েস্ট শোয় কি এহুনতেরিংগে রিকোয়েস্ট তং হিমনাল দিনুমা হাস কোলা শোয় মিরে মিয়েদুগে শোয়ে সম ফাসকেডি তিরিহা হামে কুরিয়েগেন্দা আলগন মেগে এহুনতেরিন ফুরসত ওন্নানে ফাহিজ্জে হুমা হামে শোগো বাভেরি ভেলুমা মেসেজ কোল্লুমুগে শোগো বাভেরিবাং এদে কামগাওয়ানমা মাউলুমাত ফুরিহামা কোল্লা দিফা দি মেগাডিগ ইয়াডো ಹಾಲಂ ಬೇಣವಾ ಲವೇಗೆ ನಂದಿ ಲವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲೀಮ ಹೆ ಬ್ಯಾವರಿನ್ನ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆಂಗ್ ಉಳಾಲಾನ ಅಮೇಕಣಿ ಲವೇಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ಕಮ್ಗವಾಣಮ ನೂನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕ ಆಯ್ಕೀಗ ಎವಿಸ್ ಫರಾತಕ ಲವೇ ಫೋನ್ವಾಲಂ ಬೇನು ಕಮ್ಗವಾಣಮ ವಿಸೆ ಫುರ್ಸತ್ ಒನ್ನಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎಆ ಮೆದುರ್ಕೊ ಡಿಎಫ್ಎಂ 91 ಮೆ ಪೇಜಂ ಮೆ ಜೆಹೆನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಎ ಲವತವಿಸ್ ಹಿಮನಾಲ್ ದಿಗೆ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆ ಶೋ ಕುರಿಯಗೆಂದಾಣಿ ಶೋಗೆ ಫುರತಮ ಫೆಶುಮಕ ಮಿ ಹಿಮನಾಲ್ ದೇನಿ ಇದೆ ಮಿದುಸ್ವರ ವರ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರೀಸ್ ಎ ಮಿ ಮುಸಾಫಿರ್ ಕೆಫೆ ಮಿ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಲವೇ ಅಳ್ಗುನ್ ಫೆಶುಮಕ ಮಿ ವಾಲ್ದೇನಿ ಟೂಟಾರ ಹುಂಗ ಮಿಲವಾ

उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं के शर्मा के झुकने पे, या लिखूं पहाड़ों के बारे, अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं सफर।

0: कुछ नहीं निकल रहा, खाली पसीना निकल रहा है।
1: फिल्म लिपुन बोरु तारुही बबलारु मि फिल्म गे वाहक गे निस्तीफा वागोता फिल्म उन फेनिगेंदा एक्टिन नगिना बेगे तौरी फ्लिप फवे आदि फिल्म गे म्यूजिक कीवेस गिना बेक वरक कमु दिएचे वके खास को फिल्म इविगेंदा सनो एक पलचेन मि लवे की बेलुन तेरिन न फुंग असरु तके कुरवे लवे मिगे कुरिन नुसरत फतेह अलीहान गे अडुंग इविगेंदिया मिलवा मि फिल्म का किया फवनी राहत फतेह अलीहान

0: Die Wehe FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Guess the dialogue. तुम हमारी दोस्ती को यूं जलील नहीं करोगे, मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे, वादा करो मुझसे।
2: अगर मैं दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है।
1: हाँ दी, अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं थे, मैं जा रही हूं।
2: सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उसे?
1: मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया, वो मां है ना, समझ जाए।
3: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बाला ना साल शोया जवाब फणो मगे सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम बार गड़ सु मिनट कौन में हफ्ता को स्कूरी एक गेंदा बाला ना साल मी शो का गेनेस ते केस ते डायलॉग के एम में गिने सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को इफ़ार नगा गुरुतुं खास हादिया ली बेने एम गीण सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवरी नगाणी कोमे महे गिवस एम फहुश होगा
1: गेस द डायलॉग
4: हिंदी सिनेमा के एम मकबूल एक क्राइम थ्रिलर फिल्म कमावा डोन्ने बुनमु एफएम नेंगे मीहकु मदुआने मी एकिए की जील तकं एकी गोयकतों खास सवा फिल्मे मी हफ्तागे एहारा मिहार मी बैग मी बलालनी नवार सते का है दिहा अवना हरु निर्णु डुन्ना एगे फहुं दिहास हवना हरु निर्णु डोन द चेस बिगिन सगेन
5: एरा मिहार

0: ಮೇ ಫಿಲ್ಮುಲ್ ಎಮ್ಮೆ ಬುಡ ಫಾಹಕುರೆವೆಣಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಕುಳದಾಣ ಡುವಲ್ ರೋಲ್, ಏನ ವಣಿ ಹರುಕಶಿ ಡೋನ್ಗೆ ರೋಲಾ ಮಡುಮ್ಯಾತಿರಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ರೋಲ್ ನುಹನು ಫುರಿಹಮೆ ಅದಾಕೊಫ. ಮೇ ಫಿಲ್ಮಕ್ಕೆ ಏರುಗೆ ಜಮಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಗುಳೆ ಗೊತಗುಫದ್ದಾಫವಾ ಯಕ್ಷಣ ಅಸರುಗದ ಡ್ರಾಮಾಯ ಹಿಗ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದಿ ವರುಗದ ಡೈಲಾಗ್ ತಯಕುಲವೇ ಮಸಾಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಮೀ ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ ಎಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮೇನ್ ಸಿಫ ಎಮ್ಮೆ ವರುಗದೆ ದಕ್ಕುವಾದಿಂಗ್ ಎಂ ಒಫೆದ್ದುಂ ಬೆಸ್ಮೆ.
1: नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई.
2: डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो.
3: डॉन, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांधकर खींचते हुए ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ. मैं तुम्हारे साथ आई, मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपने मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी.
1: कौन रमेश?
3: बहुत चलाक होना डॉन, लेकिन पुलिस को उस टैक्सी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल चुके हैं.
0: अमिताभ के मिहिटा कैकड़ का तीरिस आहर फुरुम्फाहूं देहा सवन आहरो फिल्म के लियुंतेरिया जाविद अख्तर के दरिफुलो फरहान अख्तर बनी आ जील का डॉन अलम तारफ को दीफा.
4: शहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार, कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में. जिंदगी से खेलना मेरा शौक है, खेलता हूं अपनी शर्तों पर. जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत है. अरे दीवानों, अब तो पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन.
5: यस, हु इज इट?
0: एक्सेल एंटरटेनमेंट के दशुं रितेश सिद्वानिया फरहान अख्तर प्रोड्यूस करी मी फिल्म के लीड रोलम फेनिगें दिए शाहरुख खान, रोमा के रोलम फेनिगें दिए प्रियंका चोपड़ा, मी के तुरुं अर्जुन रामपाल, ईशा कोपिकर, बोमन ईरानी, ओम पुरी आदि पवन मल्होत्रा फेनिगें दिए करीना कपूर के खास फेनिलुमे मी फिल्म फेनिगें दिया.